ताइबंग बुशें भी बशु नाहक नी ताइबंग की लीला शो नाहक की कुमाई नी हरि नाम ना कृष्ण नाम ना ताइबंग बु लान बगी पांबई नी हरि नाम ना थवाई नी कृष्ण नाम ना मिंगले नी ngam namak maya gi punsida nang tagi minglen bu shon bana achum balambi phangbani

0: नौबी नौबी, तुम क्यों रो रही हो? बताओ तो सही, ये खाना है या ये करना है? कुछ तो बताओ, मेरे पीछे पीछे चलकर ऐसे क्यों जिद कर रही हो? मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, अब रोना भी बंद करो। तुम रोती रहोगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम क्या खाना चाहती हो मुझे बताओ तो, मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद दूंगी।
1: मुझे कुछ नहीं खाना।
0: अच्छा, कुछ भी नहीं खाना तुम्हें? तो तुम नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूंगी? ऐसे ही जिद करती रहोगी तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छी बच्ची ऐसा करती है क्या? तुम्हारे कुछ मांगने पर मैंने कभी मना किया है क्या? तुम अब छोटी बच्ची भी नहीं रही।
1: माँ, अब तुम गुस्सा मत हो, मैं बता देती हूँ।
0: तो बताओ ना, मैं यही तो तुम्हारे लिए हूं।
1: एक कहानी सुनाओ, बस यही कहना था।
0: इसलिए क्यों नहीं सुनाऊंगी? जरूर सुनाऊंगी। बताओ कौन सी कहानी सुननी है तुम्हें?
1: रूस के पुराने समय की एक कहानी है जो हमारी किताब में भी है। जार की बेटी और अजगर, सुनाओ माँ।
0: जार की बेटी और अजगर। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम कब से जिद कर रही हो? आओ बरामदे में बैठकर ठीक से सुनाऊंगी। बैठो यहाँ, ठीक है ना?
1: हाँ माँ, कहानी शुरू करो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है।
0: हाँ हाँ भाई, ध्यान से सुनो। पुराने समय की बात है, रशिया में कोयफ नामक एक शहर था। इस शहर में रहने वाले लोग सुख और शांति से रह रहे थे। अचानक कोयफ शहर में एक बार कहीं से एक अजगर आ निकला।
1: अजगर?
0: हाँ, इस भयानक अजगर को देखकर शहर में रहने वाले लोग डर से कांपने लगे।
1: इतना बड़ा, इतना भयानक अजगर? माँ,
0: हाँ,
1: मैं भी डर गई।
0: क्यों डरना, कहानी तो है।
1: हाँ माँ, आगे सुनाइए।
0: उस अजगर ने शहर के बीचों बीच ये ऐलान किया।
2: सुनो सुनो सुनो, इस शहर में रहने वाले सभी लोग प्रतिदिन हर परिवार से एक एक सुंदरी कुमारी को मेरे खाने के लिए बारी बारी से देना होगा। अब मैं जा रहा हूं।
0: इस प्रकार वह हर दिन एक एक सुंदरी कुमारी को खाकर आराम से रहने लगा।
1: प्रतिदिन वहाँ हर एक घर से एक एक कुंवारी लड़की को खा जाता था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो उस शहर में कोई भी कुंवारी लड़की नहीं बचेगी।
0: हाँ नौबी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस प्रकार प्रतिदिन कुंवारी लड़कियों को खाने के कारण पूरे शहर में कोई भी कुंवारी लड़की नहीं बची।
1: ओ
0: अंत में एक दिन जार की सुंदर बेटी की भी बारी आ गई।
1: ओ
0: वह अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी। उसका एक पालतू कुत्ता भी था जो उसकी हर बात मानता था। अजगर शहर के पास एक सुरंग में रहता था। सुरंग यानी जमीन के अंदर बना हुआ एक रास्ता या बड़ा बिल।
1: आगे क्या हुआ माँ?
0: जार की बेटी साहस जुटाकर अजगर की सुरंग के पास पहुंची। उसने डर से कांपती हुई आवाज में कहा,
3: हे अजगर, मैं जार की बेटी हूँ, आज मेरी बारी है, अब तुम बाहर निकलो और मुझे खा लो।
2: अरे, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा।
3: क्या हुआ है अजगर, तुम मुझे खाए बिना क्यों घूर रहे हो?
2: क्या तुम जार की बेटी हो?
3: हाँ, मैं जार की बेटी हूँ।
2: मैं उतना कठोर जीव भी नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें बड़े प्यार से रखूंगा। डरो मत, हे लड़की, मेरे पास तुम खुशी से रहना।
0: इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अजगर ने जार की बेटी को अपनी इच्छा बताई, लेकिन जार की बेटी किसी न किसी बहाने से उसकी बातों को टालती रही।
1: फिर क्या हुआ माँ?
0: लड़की असमंजस में पड़ गई। वह सोचने लगी, क्या करना है ये सोचती रही। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, अपने पिता को एक पत्र लिखकर अपने पालतू कुत्ते के हाथ भिजवा देगी। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा,
3: मेरे प्यारे दोस्त, सुन, तुम सदा मेरा कहना मानते हो ना? ये पत्र मेरे पिताजी को दे आओ और फिर तुरंत मेरे पास लौट आना। अब देर मत करो, ये लो, जाओ।
4: हे विधाता, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। मेरी जान से भी प्यारी बेटी अजगर का भोजन बन गई। शहर के हर घर से अपनी बेटियों से बिछड़ने के रोने बिलखने की आवाज आ रही है। मैं अपनी ही बेटी को नहीं बचा सका। मैं कितना असहाय और दुर्बल हूँ। अरे, ये तो मेरी बेटी का कुत्ता है। मेरी बेटी इसे कितने प्यार से पालती थी। मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। हाँ, यही मेरी बेटी का कुत्ता है। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मेरी बेटी की प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें मेरी बेटी ने भेजा है? बताओ, क्या भयानक अजगर ने मेरी बेटी को खा लिया? अपने पिता को बताओ। अरे, ये तो पत्र है। ये कुत्ता भी भाग गया। इस पत्र में क्या लिखा है? हाँ, मेरी बच्ची तो जिंदा है। अजगर के चंगुल से बचाने को लिखा है। सुनो, इस शहर के जितने भी बलवान और वीर पुरुष है, सबको संदेश भेजो कि वे कल मेरी सभा में अवश्य उपस्थित हो।
0: जार की बेटी बहुत समझदार और चतुर थी। मनुष्य सभी जीवों में सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। उसने अजगर से प्यार करने का नाटक किया ताकि वह उसका रहस्य जान सके। एक दिन जार की बेटी ने अजगर से बात छेड़ी।
3: सुनो हे अजगर, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ।
5: पूछो, क्या बात है?
3: तुम तो बहुत ताकतवर हो।
5: वो तो है।
3: कोई तुम्हें मार भी नहीं सकता, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें मार दिया तो मेरी रक्षा कौन करेगा?
5: अरे पगली, घबराओ मत। मुझे मारने वाला इस संसार में कोई नहीं है। सिर्फ निकिता नाम का एक व्यक्ति ही मुझे मार सकता है। उसके अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता।
3: ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं निश्चिंत होकर रह सकूंगी। मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा।
1: तब तो जार की बेटी ने अपने कुत्ते के हाथ अपने पिताजी को संदेश भिजवाया होगा।
0: शाबाश, तुमने बिल्कुल सही समझा। ऐसा ही हुआ। जार तुरंत निकिता के पास गया। निकिता फल बेचने का काम करता था और शहर से थोड़ी दूर रहता था। जार ने उसे सारी कहानी सुनाई और अजगर को मारने का अनुरोध किया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने निकिता से विनती की और कहा कि इस काम के बदले वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। लेकिन ये बात सुनकर निकिता बहुत क्रोधित हो गया और उसने ये काम करने से इनकार कर दिया।
1: तो माँ, फिर वे किसकी बात मान गया?
0: निकिता सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और अच्छा व्यक्ति भी था। जार को उसके दयालु स्वभाव का पता था। बहुत सोच विचार कर उसने कुछ अनाथ बच्चों को निकिता के पास भेजा। अनाथ बच्चे निकिता के पास पहुंचे और आंखों में आंसू लेकर बोले कि कृपया उनकी दीदी को उस भयानक अजगर से बचा लीजिए।
1: तो बच्चों की बात सुनकर वे मान गए क्या?
0: हाँ, अनाथ बच्चों के आंसू देखकर निकिता का हृदय पिघल गया। उसके मन में दया उमड़ पड़ी। उसने अजगर से लड़ने के लिए हाँ कर दी और अजगर के गुफा की तरफ चल पड़ा। अजगर की गुफा में पहुंचकर जोर से ललकारा,
4: हे अजगर, बाहर निकलो डरपोक। अपने बिल में छिप कर क्यों बैठे हो? अगर दम है तो बाहर आओ। आज तुम्हारा सामना मुझसे होगा। तुम जैसे तुच्छ जीव ने मेरे शहर की कितनी ही प्यारी बहनों को अपना भोजन बना लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
5: क्या तुमने मुझे डरपोक कहा? तुम मनुष्य तो मेरे भोजन हो, मैं अपने भोजन से क्यों डरूंगा? आज तो मैं बहुत खुश हूं। मेरे भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया है।
4: हे अजगर, बातें करके समय मत गवाओ, बाहर आओ। देखते हैं कि इसमें कितना दम है। मैं निकिता हूँ, तुम नहीं जानते?
3: अच्छा, तुम निकिता हो?
5: देखते हैं।
4: तुझ, तुम मुझे अपना भोजन बनाओगे?
3: बस,
5: मैं तुमसे नहीं जीत सकता, इसलिए आओ शांति से सब कुछ बांट लेते हैं।
6: इसने चालाकी दिखानी शुरू कर दी।
4: ठीक है, जिसके हिस्से में जो आए उस पर दूसरा कभी कदम नहीं रखेगा।
5: तुम इस लकड़ी के भारी हल से एक रेखा खींचो और अब सागर का भी बंटवारा होना चाहिए। आओ मेरे पीठ पर बैठो, चलो उसे भी बराबर बांट देते हैं।
6: अब किनारे पहुंचने वाले हैं। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस तलवार से अजगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
4: देखा, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी थी।
0: इस तरह दुष्ट अजगर मारा गया। जार की बेटी सुरक्षित अपने माता पिता के पास लौट आई। शहर के सभी लोग फिर से बिना किसी डर के पहले की तरह सुख और शांति से रहने लगे। तुम भी जार की बेटी की तरह बुद्धिमान और चतुर बनना बेटी।
1: ये तो बहुत खुशी की बात है और कहानी भी बहुत मजेदार थी। किसी दिन जब आपको फुर्सत मिले, हाँ, मुझे एक और कहानी जरूर सुनाइएगा।
0: बिल्कुल मेरे बच्चे, अगली बार मैं तुम्हें एक और रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न जाड़ की बेटी कैसी लड़की थी फिर से सुनिए जाड़ की बेटी कैसी लड़की थी
0: अचुंब पाखुम पीबीरक पसिंग की मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगत लब महिरोय सिंग दा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनी सुब अमसुंग अहुम सुब तारब सिंग दा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंना पाखुम पीबीरक पदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिक चुम्न इबिरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पिबिरउ पाखुम पिबिरक मतमदा एपिसोड नंबर इबिरकप काउबिगनु प्राइज विनर दी ngasidegi chaiwol amagi matungda lawthok segani ममांग संदोक से खिबे एपिसोड चिंगदा चुमना पाखुम पिबिरक पा अमदी लकी ड्रो तौदुना खंगतलाबा मना फंगलगदब महिरोय सिंग लौथोकतुना खंगनजरी एपिसोड नंबर 43 माथोयगी मना फंगलगदब महिरोय सिंग दी मथंग सिटना अहानबदा पाथौ मैतै खुंद्राकपम खंगाबोक अप प्राइमरी स्कूल अनिसुबदा युमनाम लनलैमा लाइकोन अप प्राइमरी स्कूल अमसुंग अहुम सुबदा थियाम कंगलेचा लुवांग केंद्रीय विद्यालय स्कूल अकामपानी एपिसोड नंबर 43 निथोयगी मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा सुहेब अख्तर स्टैंडर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल अनिसुबदा एल फमनाइब मंगांग ललामबुंग हाई स्कूल थांगमैबन अमसुंग अहुम सुबदा नाउरेम लिनथोय चनु कंगलेपाक मॉडर्न स्कूल लाइरेन काबिनी एपिसोड नंबर 43 मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा एलेना मोयरांगथेम कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट थौबाल अनिसुबदा पाथौ मैतै खुंद्राकपम खंगाबोक अप प्राइमरी स्कूल अमसुंग अहुम सुबदा थियाम कंगलेचा लुवांग केंद्रीय विद्यालय स्कूल अकामपानी एपिसोड नंबर 44 मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा सोरेन संगबम निलंदा देवी द लिटल स्टार इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल थौबाल हाउखा अनिसुबदा आइरिस सोयबम मिलेनियम स्कूल अमसुंग अहुम सुबदा गृहलक्ष्मी थांगजम मारिया मोंटेसोरी स्कूल कोइरेंगैनी एपिसोड नंबर 45 मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा नामैराकपम निंथोंगंब मैतै नोंग्रेन अप प्राइमरी स्कूल अनिसुबदा लमजिंग बी कोनसम कैथोलिक स्कूल कांचीपुर अमसुंग अहुम सुबदा अहैबम थोहेन मैतै सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल इम्फालनी एपिसोड नंबर 46 की मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा एलांगबम महै थोइबा सेंट जोस हाई स्कूल वांखै अनिसुबदा चिंखैंगानबी मुतुम कैथोलिक स्कूल कांचीपुर अमसुंग अहुम सुबदा युमनाम ब्रिंदा चेनु सिलैमे इंग्लिश एकेडमी वांगोइनी एपिसोड नंबर 47 की मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा लाइसम लमगानबी चनु डायनामिक एजुकेशन फाउंडेशन अनिसुबदा असेम गोविंदा सिंह स्टैंडर्ड रोबोट हायर सेकेंडरी स्कूल अमसुंग अहुम सुबदा कांगाबम लैमगानबी चनु कंगलेपाक मॉडर्न स्कूल ने एपिसोड नंबर 49 की मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा यायोइब वांगलेमबम लाइकोन अप प्राइमरी स्कूल इम्फाल ईस्ट अनिसुबदा सुहेब अख्तर स्टैंडर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल अमसुंग अहुम सुबदा एलिना मोयरांगथेम कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट थौबालनी एपिसोड नंबर 49 की मना फंगलगदब महिरोय सिंगदी मथंग सिटना अहानबदा थिंबाइजम योहेनब खुमन कंगलेपाक मॉडर्न स्कूल अनिसुबदा मंगाल पंगसाताबम क्राइस्ट ज्योति स्कूल मंत्री पुखरी अमसुंग अहुम सुबदा लमजिंग बी कोनसम कैथोलिक स्कूल कांचीपुर ने 이피소드 넘버 짜머리기 마나 팡르그드바 마이로이싱디 마탕시나 아한바다 아몬 비벡 왕우 라이팜 아퍼 프라이마리 스쿨 아니슈바다 윰남 사이니 데비 가이삼통 하이스쿨 아마숭 아홈슈바다 닝토그점 시브라싱 왕카이 하이스쿨니 아돔기 셀기마나 아돔기 뱅 에카운타 타락라가니 나시기디 마탕시다 카이네야 탕니제리 비나비라시
2: Hujikta biri radio class jamari marfudra hum doi shubha tangkakta class 6 ki Hindi ani shubha para jar ki beti aur askar. Thauramasi Department of Education is Samagra Shiksha Manipur ki tengbangaloi nana sanduk chapani. Akashvani Imphal, hauzi ayuki pungtare tari sanduk chari khonjal na chong.

थोरम से दुख ने तहन जरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल लगिनी हौजिक लांथुक चरी अतोप मंगाल थोरम से दा यांगोई मचा थोरम से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट SCERT की टेंगबांगलोइनना संदुक चपनी

नशुंग लांगी फिल्म से देखी पुष्पा रानी की नाइटों खंजल दा इसे ऐसी तान जखी बगल इन्हें ना नसी की दमक तड़ी गुड मॉर्निंग मणिपुर थोरम लोशन जन बगी पुंजा दो योरोगले ऐसे में स्थापित रखतो ना इसे खन भी रखी बा थोरम सरु क्या भी रखी बा ख्वाई कुरिंग अमरी थोरम हाउ बदगी ना लोयो पावो ताबी की बा ख्वाई कुरिंग बो हन्ना हन्ना थगत चरी लो इन्हें ना ऐसे में स्थापित रखी बा मरी लोकुच चबंग अम जहू डबा कुरिंग मक्की दमक थोरम ताबी रे बा ख्वाई ना पुक्चल चाउन गाक पी गनी अमरी मतुंग तारक पा थोरम सिंग दसो सरु क्या भी रहो अदोम की इसे सिंग सुख सोई सोई देना खुदोल तम जगी हाई बो वापम सिकलो इन्हें ना गुड मॉर्निंग मणिपुर मतांग से लोशन चरी

0: ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯦꯠ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯁ 101.5ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁꯔ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯇꯨꯔꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ꯫
3: ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯃꯣꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯡꯊꯥꯛꯈꯣꯜ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯔꯥꯖꯃꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯝꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯡꯊꯥꯛꯈꯣꯜ꯫

0: संगीता, संगीता
1: ना ताको मैं आई थी कना कना और विनिंग रे उधर कोई रे दा
0: कम दो ये ने नंबर
1: नुमाई दी हाई ताई वाई आई दी हाई दी से पांच दा पम्मो आई दी ताको मैं से सिंग दा दुम कुंडा लाई ता दुना लाई खबर विनिंग रे
0: आई उधर दा हैक्टा हाई जन मालिक को
1: हाई जन बना दी ये सेंग बने
0: सेंग वो सेंग वो दी पाई दा बोरा ली ड्रोबो
1: आई दी बोरा हाउ दे
0: कंग उ
1: ꯀꯥꯡꯉꯧꯁꯨ ꯉꯧꯗꯤꯌꯦ
0: ꯑꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯔꯝꯗꯕꯨ ꯁꯅꯥ ꯀꯥꯡꯉꯧ ꯕꯣꯔꯥ ꯄꯥꯛꯅꯨꯡ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ
1: ꯉꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤꯅꯤ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯅꯪꯗ

0: 呢？你是去？
1: 可没了。
0: 如果你通大我吧，给侬耕地，你别打不着哎。
1: 可没呀，我是的兄弟呀了喽，我啥有？我的妈妈把手干吧。
0: 啥都不，行的侬都喊我给多给，贵如也吧。
1: 我爱去的这可没能行吗？啊，爷那卡了我们的账啊哦。
0: 哎呦哎呦！
1: 刚到你是的呀，还是在玩命比他妈的忙哎呀？
0: 可以玩的侬呢呢？
1: 有人把兄弟呀的没能不？怕么怕俺都的。
0: 啥都有那这些，哎，哪一些？一年个呢，我不得打那个老婆呢。
1: 可以玩我呢。
0: 一了，一呢，生意大个没那么多呢呢，一呢，生意大个，阿伦大伯个麻烦呢些，但是一个那没力呢嘛呢。
1: 哎，的那还那还比那那问的，生意大些，很多没得的嘛，我没得到一些，还不还给来不？
0: 妈也没得事的，哎呦，他这人怎么呢吧？阿都过了什么心的了，不玩呢？
1: 还都不得该呢。好的我们来问那这铺啊没那还那里是的
0: 嗯呢哎呢我就听那一没进卡来过呢生意大事弄得我是老给过
1: 该都不给啊该都不给你比不弄我看给我呢老给到你吧不吃给我呢比我给他吧呢啊都个能吃空刚刚是的那名这里边滚的啊泡我你的呢可以给你啊你来边那个门里过
0: 是啊看他现在那个比老板的不玩的呢那个的阿伦来不了我们的爸妈不可得得了什么的可没得你该说的地方呢
1: 那爹那怕你爹可大一跑的要亲那里哈
0: 是的呢可大一跑的那个西跑我们的外阿们跑我碰到对家里
1: 可以给啊该到那个碰见的他们吧他们为了跑的把海南国话都咚咚黑太多可大呢那我们的爸妈走
0: 那你呢上帝大师安安我呢这个是刚刚的不过的地可能没跑到吧可能咱俩把你逼得你是为我好多不是那一点不一样你呢来开的鬼有事的让你们离过
1: 那他的房子他啥鬼玩你呢能来海里去那地那走
0: 都打来的呢
1: 不都是的你爸呢不
0: 都一年的朋友可是心虚吧那你一年的不给我身份多都是逼着给吧你心忙啊那都一年的海都不
1: 爸爸不的可是黑的爸爸你那都怕的
0: 忙啊都喊了谢谢你回答啊都个姑娘我比较给吧
1: 啊会会会那么谢都黑所以的吧的哎是所以的都不看了可没那你也是其实啊来问你比那天黑看个 bro
0: 啊哎是看你的呢啊都那不一年的还是留心呢哎可以呢上一大学我第二次我是通了就可以了
1: 啊嘛那你比爱嘛的不用给多啊对嘛那个是去年的才能进呢
0: 哦
1: 谢都可没呀你的好像没一把米都
0: 哎呀用的哎所以那提了个好像用的不是不用拍打了不都
1: 谢谢一年呢是没当罗那他们呢一下子比他给谁
0: 弄了也都贵呢呀
1: 哎还得给谁 glass 的谢谢了个你还是苦苦你啥本拉不没得没的谢谢谢他哦啊都跟你可没呀mata masuk kuih apa sih? Nung mata ini sangat agi main dah selalu basuh lagi tri. Mana su nung mata agi dah lagi. Nanggi marang kita makta ni ini yang nama kita selalu doy sih.
0: Ini ya, si mati yang terpilu sih. Gila ni kang ta ya ta aja.
1: Ah sih sih sih dah lagi deh. Aduh gane komai ya. Arun driver ga aiga kang nara basuh nung mata kau nadi maga. Panas su kuih dia dah nama mana sangat agi hotel dah lagi sih.
0: कर ही लो कौन जी दीने
1: मधु के मरम को ना है के आई ने मा बुआ रो बखरे ले थाना नुंगाई ना दसु अजीति कौन ब तारे दो नंगे मरम की दमक
0: खंदे खंदे लुइने कौन के कौन रो संगे संगोए इनी अंकनी आई की थवती ने सो सो या यारो हेर सिनी को इने आई और के
1: आ फरे फरे चलो चलो आ खो मई है ये गयु तो सोई बे याद देखो
0: आ सोई हो गई ने सोई हो गई

नंगा थिंग नरम द्रवा फिल्म मस्तगी सदानंद की नाइटों खोंजल दा स्नातोनिंग थोजाने सेरिंग वा मधी को कोबिना सेरांग बे सेमा ताबिरे कुदोल गेरोई बत ताबिरे से अयिंग बलेनम फिल्म मस्तगी पुष्परानी की नाइटों खोंजल दा के प्रियो कुमार ना सेरिंग वा आर के वीरेंद्र मधी विक्रम आदित्य ना सेरांग बे से

0: हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, के थोड़मनी कनाई बिर बनो।
1: हेलो,
0: हेलो, ताबी रबरा। हेलो, फोन से लाइन दी ले पमाली को अदो। हेलो, ताबी रबरा।
1: हेलो,
0: ताज़े ही ताज़े ही ताबीद्रबु सोमसे नक्पी गनी दुदी मखा ताब कोल अम्मा मुक लखचन भोना जगे।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो ताई
0: तभी ब्रा। हेलो,
1: भी मैशा की कहीं उसे खोन दिए देखी तंग तब से
0: ओ खजिक तंग लिखा चल रखे इन भी उन्हें तभी रब ब्रा
1: खतंग लिखा फिर ओ
0: तभी रब ब्रा हो जितने
1: हाँ तारे तारे
0: होय होय
1: असे इमा नहीं कोई इमा कोई न ओले ही जे कोई रे नहीं बे मैं इमा वो ही ने ये दियो जे चलो पगा चाहिए हूँ पूरों चूरे इमा न तारे इजे
0: ဒီကဟိဂျေမာဝေဂျေဂျေဇဟိအာသဘင်တီသဘင်တီနိုင်ကိုမရှိရဘဘဂျီဥစီခြေအဲဒါအဲဒါအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအဲအ

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून मैडम.
0: गुड आफ्टरनून, कना ओय बिरा बनो मिंग ले फम हनंग तंग खंग जगे.
1: मैडम, ऐसे खुराई ले वागो मनाक ते की तरंग तेल सरमिला कम से ही.
0: हाय हाय, सरमिला बुतराम नोक चरी ममांग दसु थेंगा जखरे को सरमिला.

नमस्कार खुरमजरी, मैं निंथक होंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों, आज भी गीतमाला में आप सुनेंगे हर गुरुवार की तरह कार्यक्रम सदाबहार गीत। दोस्तों, सदाबहार गीत में हम अक्सर लेकर आते हैं ऐसे गीत जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते और हर दौर में लोगों की पहली पसंद बनी रहती है। तो सुना जाए कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म नीला आकाश से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, राजा मेहदी अली खान की शब्द रचना है और मदन मोहन का संगीत।

दोस्तों, ये ऐसे दौर के गाने हैं जिनमें हस्तलिखित पत्रों, चोरी छिपे देखी गई निगाहों और चांदनी रातों में किए गए वादों की यादें समाई होती हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म आंसू बन गए फूल से। गोविंद मुनीस की शब्द रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब सुना जाए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आई मिलन की बेला से अगला गीत, शब्द रचना हसरत जयपुरी के और संगीत से सवारा शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, सदाबहार गीत ऐसे गीत हैं जो कभी फीके नहीं पड़ते। इनकी धुनें बचने के बहुत बाद तक हवा में गूंजती रहती है।

0: 까비리 누비기 토름 ngasigi thorum da tahan jakhri hakchang phaba bunsi amagi damak aphaba chinja hiramasigi matang da dietitian miranda ngairang bamga unaduna wari watai saba unabiki ba aik pampriyo bala amadi thorum puthokpa thokchom green bala tabiri bisi akashvani fall ki fm sangai channel degini
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: हाउसिक पुंफमस्तमु ताबिरसी रेडियो क्लास चमरी का मरीफुतरा मरी सुबह तांकक नसीगी तांकक तले जरे क्लास सिक्स की हिंदी सब्जेक्ट की लेसन नंबर 11 खेल कूद और श्वास थोरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तिंग बांगलोइनना संदुक चुप थोरमनी

0: बेटी लिंथोय,
1: हाँ पिताजी।
0: तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगी? अरे तुमने तो जूते भी पहन लिए हैं।
1: पिताजी, हमारे इलाके की लड़कियों और नदी के उस पार की लड़कियों के बीच बैडमिंटन प्रतियोगिता होने वाली है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसलिए हमें अभ्यास करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ।
0: हाँ, खेलना तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी सबसे अच्छा तो पढ़ाई ही है। तुम्हारे पिताजी को ये ज्यादा पसंद नहीं है।
1: पिताजी, मैं तो पढ़ाई भी करूंगी और बस शौक के लिए ही खेलती हूँ। हमारे क्लब के सेक्रेटरी ने जोर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूँ। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो आपको पसंद न हो। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ।
2: अजी सुनते हो?
0: क्या हुआ लिंथोई की माँ?
2: क्या हुआ लिंथोई, क्या कह रही है?
0: खेल का अभ्यास जाने को कह रही है।
2: हमारा बड़ा बेटा मैराब तो रोज सुबह जल्दी फुटबॉल खेलने जाता है, तब तो आप कुछ नहीं कहते थे। आजकल हमारी बेटी लिंथोई भी खेल कूद में भाग लेना चाहती है, तो आप उसे मना क्यों कर रहे हो?
0: लिंथोई की माँ, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि खेल कूद क्या है, लेकिन हमारी बेटी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देती है। वो पढ़ाई से कभी नहीं थकती और हमेशा कक्षा में पहले स्थान पर आती है, इसलिए।
2: हाँ हाँ, मैं समझ गई। आपका कहना है कि पढ़ाई और खेल कूद दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आपने सोचा होगा कि अगर वो खेल कूद में भाग लेगी तो उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई से हट जाएगा।
0: हाँ, बिल्कुल सही।

0: मैं भी तो यही सोच रहा था। उसका भाई भी सुबह निकलता है और शाम को लौट कर आता है। दूध, केला, अंडा आदि खाता रहता है।
1: हाँ?
0: फिर भी मैंने उसे कभी मन लगाकर पढ़ाई करते नहीं देखा। लड़का है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अरे लिंथोई की माँ, मुझे गलत मत समझना। मैं ज्यादा बोल देता तो कहीं उससे बुरा ना लग जाता। यही सोचकर मैं चुप रहा। हमारी बेटी को दुखी होकर अंदर जाते देखकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ।
1: ठीक है बाबा, हम दोनों अपने बच्चों का भाग्य नहीं बना सकते। जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की भलाई न चाहे ऐसा कभी नहीं होता। अरे जो आ रहे हैं कहीं वो हमारे इलाके के क्लब सेक्रेटरी थोइबा तो नहीं?
0: हाँ थोइबा ही है, क्यों आए होंगे? थोइबा आओ आओ।
2: हाँ मामा जी।
0: अरे थोइबा कैसे आना हुआ, क्या ऐसे ही आए हो?
2: बस ऐसे ही आए हैं मामा जी, आपसे एक बात कहने आए हैं।
0: क्या बात है, बिना संकोच के बताओ, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो?
2: मामा जी मैंने सुना है कि हमारी बहन लिंथोई को बैडमिंटन खेलना थोड़ा बहुत आता है। लड़कियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है। मैं उसे उसमें भाग लेने के लिए बुलाने आया हूँ मामा जी। पहले भी आने का सोचा था लेकिन क्लब के बहुत काम होने की वजह से नहीं आ सका। आज भी मैंने उसे थोड़ा अभ्यास करने के लिए पहले ही कह दिया था।
0: लिंथोई तो कपड़े तक बदल चुकी थी लेकिन मैंने कहा कि कहीं उसका ध्यान खेलकूद में ज्यादा न लग जाए, इसलिए मैंने उससे कुछ बातें कही। फिर उसने कहा कि वो नहीं जाएगी और पढ़ाई करने के लिए अंदर चली गई।
2: आज तो मामा जी को खेलकूद के फायदे के बारे में अच्छी तरह से बता कर ही जाऊंगा। मामा जी
0: हाँ हाँ,
2: पुराने जमाने में एक कहावत थी, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे तभी महान होंगे। उस समय लोग सोचते थे कि खेलकूद से पढ़ाई का नुकसान होता है, लेकिन यह बात आज के जमाने में सही नहीं मानी जाती। इसलिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भी खेलकूद को बहुत महत्व दिया जाता है।
0: ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सिर्फ खेलकूद से भविष्य नहीं बनाया जा सकता। अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर पढ़ाई में कमजोर हो जाए और खेलकूद में भी आगे ना बढ़े तो सब बेकार हो जाएगा।
2: आहा मामा जी, आपकी सोच थोड़ी गलत है। पढ़ाई भी जरूरी है और खेलकूद भी। हम सिर्फ बैठकर नहीं रह सकते। बच्चा पढ़ाई में चाहे कितना भी आगे हो लेकिन अगर उसका शरीर स्वस्थ ना हो तो उसे बहुत परेशानी होगी। इससे घर परिवार को भी दुख होगा और समाज के विकास में भी बाधा आएगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है, और अगर खेलकूद में मेडल मिल जाए तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह वो अपना भविष्य अच्छा बना सकता है।
0: थोइबा
2: जी, मामा जी,
0: तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर उन्हें अमल में लाना इतना आसान नहीं होता।
2: मामा जी, मनुष्य की जन्म से ही खेलकूद उसके जीवन का एक हिस्सा रहा है। इससे हमारे शरीर को अनेक लाभ मिलते हैं। खेलकूद से बेहतर कोई व्यायाम नहीं है। खेलते समय हमारे शरीर के सभी अंग हिलते डुलते रहते हैं और हमारे मन भी तरोताजा हो जाता है। जो लोग नियमित रूप से खेलते हैं वे आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं। खेलकूद करने वाले अच्छा खाना खाते हैं और नशा जैसी बुरी आदतों से भी दूर रहते हैं। बताइए मामा जी, कितनी अच्छी बात है ना?
0: अरे थोइबा, ये सब कहानियां तो तुम्हारे मामा जी भी जानते हैं। ग्रीस देश में खेलकूद को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया जाता है। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। ओलंपिक की किसी भी प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी को पूरे विश्व में बहुत सम्मान मिलता है। पहले ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी को ऑलिव के पत्तों से बना ताज पहनाया जाता था। उस ताज को ग्रीस की बहुमूल्य धरोहर के रूप में माना जाता था।
2: हाँ जी मामा।
3: अरे सुनती हो लिंथोई की माँ, जरा दो ग्लास दूध लाना।
1: मैं लाने ही वाली थी लेकिन आपने मुझे पहले ही बुला लिया। ये लीजिए आपका दूध और थोइबा ये रहा तुम्हारा। बेटी लिंथोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
4: माँ, मैं पिताजी और भैया थोइबा की बातें सुन रही थी।
1: तो ये रहे तुम्हारे दूध, मैं तो खाना पकाने जा रही हूँ।
0: अरे लिंथोई बेटी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ, अपने पिताजी के साथ बैठकर सुन लो।
4: जी पिताजी।
2: लिंथोई।
4: जी भैया।
2: अब तुम भी आ गई हो तो बातचीत और भी मजेदार हो जाएगी। पहले समय खेलकूद को पढ़ाई लिखाई से नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन आज खेलकूद आधुनिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। वास्तव में खेलकूद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलकूद से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं, इससे हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे शरीर का सही विकास होता है। सोते बच्चों को देखो, वे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, इससे उन्हें फुर्ती और ताजगी मिलती है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अस्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता।
4: भैया, खेलकूद के इतने फायदे होते हैं, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था।
2: यही नहीं लिंथोए, लगातार बैठकर पढ़ाई करते रहने से खाने पीने की इच्छा भी कम हो जाती है। इससे व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। अगर परीक्षा के समय में वे बीमार हो जाएं, तो उनकी कठिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता।
4: वो तो है भैया।
2: मामा जी ने भी शुरुआत में बताया था ना, ओलंपिक खेल पहले सिर्फ ग्रीस देश में होता है, लेकिन अब यहाँ पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण खेल बन गया है। हर 4 साल के बाद अलग अलग देशों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है।
4: भैया, खेलकूद से हमें और क्या क्या लाभ मिलते हैं, थोड़ा और बताइए ना।
2: बहन लिंथोई, खेलकूद से हमारा शरीर सिर्फ निरोग ही नहीं रहता, बल्कि हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। इससे हमारा शरीर सुगठित और सुंदर बनता है। खेलते समय हमारा मन पूरी तरह खेल में लग जाता है। इससे हारने पर भी जीत जैसी खुशी का अनुभव होता है। खेल में भाग लेते समय सभी खिलाड़ी सामाजिक, धार्मिक और भाषा की दूरियों को दूर कर आपस में मैत्री भाव से मिलते हैं। खेलों से विनम्रता, अनुशासन, संयम, साहस और आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। इससे हमारे सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। शरीर और मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खेलना बहुत जरूरी है।
4: जी भैया।
2: और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमित रूप से खेलने से आयु भी लंबी होती है।
4: भैया, आज तो आपने मुझे खेलकूद की कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं।
0: लिंथोई।
4: जी पिताजी।
0: आज तो मुझे अपनी बेटी की पसंद का पता चल गया। हाँ, ये पढ़ाई भी करेगी और बीच बीच में खेलकूद में भी भाग लेगी। कल से इसे क्लब में अभ्यास करना है ना?
4: पिताजी, क्लब में नहीं, क्लब के मैदान में।
2: अरे मैराबा, क्या तुम भी एक खिलाड़ी बन गए हो? अरे तुम तो खिलाड़ियों के कपड़ों में आ रहे हो।
0: अरे वो तो पहले से ही खिलाड़ी बन चुके हैं, उनका तो फुटबॉल है।
5: अरे भैया थोइबा, आप?
2: हाँ मैराबा, तुम तो, ओ मुझे याद आ गया, क्लब में किसी ने बताया था कि मैराबा तो गोलकीपर है। यहाँ भी बताया था कि आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध गोलकीपर बन सकता है, वहाँ बहुत अच्छा बच्चा है।
5: भैया लोगों का प्यार ही है जो वे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं।
2: नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे खेलते हो।
5: मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे ही खेलता हूँ। भैया थोइबा, आप बैठिए, मैं पसीने से पूरा भीग गया हूँ, मैं थोड़ा नहाकर आता हूँ।
2: ठीक है मेरावा। मामा जी आप भी देखिए, आपका बेटा कितना हट्टे कट्टे हैं और तंदुरुस्त बच्चे हैं। सोता बच्चा है, पर देखने में पता चलता है कि बड़े होकर एक तंदुरुस्त खिलाड़ी जरूर बनेंगे। बड़ों का कहना है कि पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं।
0: अरे थोइबा, पता नहीं मैंने जो सोचा था, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
5: मेरे दोनों बच्चे तंदुरुस्त हैं और हट्टे कट्टे भी हैं, तकदीर में क्या लिखा है।
2: मामा जी कहते हैं कि मैदान बिना सट वाले एक बड़ा सा विद्यालय होता है, अच्छे आचरण और अनुशासन सिखाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि अखबार में रोज खेलकूद में सफल और विजयी खिलाड़ियों के नाम छपते रहते हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि मणिपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तो सरकारी नौकरी लगभग पक्की ही समझिए। आज तो ज्यादा बच्चे मैदान में नहीं आ पाए हैं, हम सभी लोगों को समय पर सूचना नहीं दे पाए। मामा जी कल सुबह लिंथोई को थोड़ा जल्दी मैदान में भेज दीजिए।
0: हाँ हाँ
4: भैया थोइबा, आप सना तुम्बी को भी थोड़ा समझा दीजिए, हम दोनों हर साल स्कूल में पदक जीतते हैं।
2: हाँ हाँ अच्छा लिंथोई। मामा जी
0: हाँ हाँ
2: मैं भी चलता हूँ, क्लब में कुछ जरूरी बातों पर चर्चा भी करनी है।
0: हाँ हाँ जाओ जाओ। लिंथोई की माँ सुनती हो क्या, खाना पका रही हो क्या?
1: क्या हुआ जी, मैराब को दूध और अंडे दे रही थी।
0: लिंथोई को भी दूध केला और अंडा देना मत भूलना।
1: हाँ
0: मैं तामोसना जावो के घर होकर आता हूँ, उन्होंने आज सुबह मिलने के लिए कहा था, बातों बातों में देर हो गई, बच्चों को पढ़ाई भी थोड़ी करवा देना, मैं चलता हूँ।
1: जी हाँ करवा दूंगी।
4: माँ जब तक आप खाना पका रही है तब तक हम पढ़ाई करते हैं।
1: हाँ हाँ जाओ जाओ पढ़ लो।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न आज के समय में खेलकूद को किस रूप में देखा जाता है फिर से सुनिए आज के समय में खेलकूद को किस रूप में देखा जाता है
0: अचुंब पौखुम पीबीरक पुसिंग की मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगत लब महिरोय सिंह दा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनी सुब अमसुंग अहुम सुब तारब सिंह दा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯝꯔꯤꯒ ꯃꯔꯐꯨ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯦꯂꯕꯦꯟ ꯈꯦꯜ ꯀꯨꯠ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯋꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯟꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯄꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯈꯨꯃꯟꯆꯥ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯕꯥꯂꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ

0: वारेपम कुमार खुमनचागी खुंजलदा मतमिसेमा ताबिरी ताबिरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की मेघर्ष चामगहुं दस महादसन दुक्चरीपा एफएम संगाई चैनल देखिनी
1: मरई बाग मरम दम नुंशी दब मियोई सिंग इरई लेरम लोई मिखल मतम लागपदा आई नफई आई खोई नहेली नांगन सकनबा लाउनब नागतनी
2: मिचम प्रजा आई खोई मयामसु लेबाग सेम गदबा अफब थबक तौरक गदबा कैंडिडेट पामनै फंगनब्रा
1: मिचम प्रजा एजेंट सिंग अमदि कैंडिडेट सिंग द बेस तोबा लीला तरा संदुकननबगी आई बसिंग दगी स्क्रिप्ट कौचरी
2: एआईआर कोड सोकतबा अमदि अनौबा अवोनब पुरकपयाबा स्क्रिप्ट सिंग स्क्रूटिनी तौजरगा अक्टोबर लेसिंगानी कुंतरुक तगी थंगना थंगना नोंमाइजिंग तरामक्ता लीलासिंग संदोकचगनी
1: सेप्टेम्बर कुंथ्रा फाउबदा पुंग अम सानगदबा स्क्रिप्ट सिंग आकाशवाणी इम्फाल की ड्रामा सेक्शन दा योहन बिरहु
3: इरमदम इरै चागिनी खन्ना नहा अहन खाइदना मतम मतम की थोकनरकबा मियोय कया ngasi एखुइना थिंगनी
4: मखल मखल की इलेक्शन लाकपदा अनोब अरिब कैंडिडेट सिंग चंगयेंगी दमक थोलुतुना लेबाक सेमबदा अचोब सरुक यानब होनरी
3: मिचम एखोय मयामनसु मखोयबु कनानो करी थबक तौख्रबगे अदुगा करी करी तौरकनी हाइबसिदि खंगनिंगली
4: लाकदुरिब मणिपुर की इलेक्शन दा कैंडिडेट ओबिनिंगलिब सिंगी वखलोन फोंदोक चनबा अमदि मियाम द मसक ताकचनबा मिनिट अहुम दगी मंगा फाउबा रेडियो की खुथांग दा संदोकनबा मतम थमजरी
3: स्पॉन्सर तौदुना संदोकचगदबा थौरम सिगिदमक आकाशवाणी फाल्की कमर्शियल सेक्शन दा तानबियु

ताइबंग वखल न लेरी गई करीगी पांग दबके वखल न नमन दौरीबा हकचांग न मालेम द तिंद्री गई करीगी थाउना हन दौरीबा आई अमना मांग की बदा पुंसी कयागे असा मांग की गनी मधुकी पाप दी आई न पूरो इतरने नुंसीबन थवाई बु चेत न पुल्ली नहाक पुसु मखोई नुंसीबन पुल्ली बनी मरुप मपांग इमुंग मनु सगई ना तेगी नांथोक्तु न चतके खनगनु नंग न पाम द्रवसु नोंग मसोईदना चतकदौरबा खोंचने नंग बु उरगा नोकचरीबा थमोईदो पिरांग सिंथाहनगे थौरांगनु नंगीदमक आई सुहिंगे आईगीदमक नंग सुहिंबियु पुन्न हिमिनसी पुन्न नुकमिनसी ताइबंग वखल न मांगद्रिंगे हकचांग न मालेमदा

0: ingin ge dia film astegi now we unite on conjure the kitrimium kisur kumar na sering ba madi arkej dena serang ba ise si tahan jaki bagalo inana manipur film segi kudo sanduk na tahan jaba matang asalo jere akashwani imphal housing numidang wairam pung mga tari manipuri tamaru ba pau tabirasi
1: akashwani imphal housing pawgi maru ba pau मुख्यमंत्री युमनाम के हंसाना सभापति ओइदना नेशनल हाईवे लंबी परिंदा इसिंग तुमचिन दन लेबम बफम सिंह यंग सिन बंगसी महाके सेक्रेटरी अतम अरिलेन बहु फिजल सिंह उनतना वफम कया खनखरे मिफम अदुदै एमएलए करम श्याम वाटर रिसोर्सेस की सेक्रेटरी इंफाल वेस्ट की डिप्टी कमिश्नर पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर यावना ऑफिशियल के अनुसार याखी इम्फाल इसके खुराई कौन जम लेकाय तले भई इपुम मपाल लाइफ हमलेन कन बलूप अमधि क्लब अनिगी मिहित कांबो हम अगा मुख्यमंत्री गंग हसी महागे सेक्रेटरी तो नखरे उनबाद उदय इम्फाल रिंग रोड कमरी लेनाना वाफं कया खनखी लोइनाना मियामना प्रोजेक्ट असी की मतांग दे यानिंग दब लेब सिंग यंग सिंगनी हाइना मुख्यमंत्री न थाजब पीकी सेक्युरिटी फोर्स न लालोबा अनि अमति मिचम याम दखि सेल खाइबद चेनब मियो एम पारे पुलिस की पाउना हाय इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांड न थी उम्बगी थबक चा थबदा प्रिपाक प्रो गि मियो अनि तोंगान तोंगान मम अफम दगि पारे फारब मियो छंग दु इम्फाल वेस्ट की थरोय जम मनिंग लेका अमति पि सुमतों नोंग थोम बम रेक तगिनी नेशनल हाईवे कुंटा तरे इम्फाल जिरि बम लंबी की रेंगपांग मार्केट मना तगि सेल खाइबद चेनब मियो एम सीआरपीएफ की कंबो अमन फारे फारब मियो इसी पॉइंट थ्री टू की पिस्तौल कापयारी मरु तरु रेडियो सेट अमी सेल लुपा लिंग अहम चौहम फागत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्मेली कम्युनिटी की यांखई सुब इमाम सक्नायरब फिलान्थ्रोपिस्ट प्रिंस रहीम अगा खानगंग न्यू दिल्ली उनखरे उनबादुदा हक सेल खुंगंग सिंग चौखट

तनोवि साथेक निंगोलगी फाथवंगम हंद्रे साथेक अदुना पाखंगी मिहुलगी खोंजेल यांगन थोइना चेन खरे तनिक पखोंजेल ना तुम इंदुना नुसी नुंगोल थामोयदा येनिंग हुलनबंगमबा इनोट हपलमबंगमबा सहेक अमा ताबदा मोमोन मिनोक तमलकपा अनि सुबा खुदोल ओइना लोमिनसी नुंसिनरीबा अनिगी नुंसी खोंचत्ता तत्तना हाइनबा वाहेनी अइने नंगबु नुसिबना हेली अइने नंगबु खंजबना हेली अदुबु मनुंग यौना नुंग पान फाउन येंगलबदा तागनी सहेक सैदा नंगने हेंदे अइने तादे खुदोल तमजरी पुष्परानी अमसुंग अमितांथा अनिगी अपुनबु खोंजेलदा निरुपमा खेत्रीमयुमना सैरेंगबा अमसुंग लमयानबे एमजीना सैरांगबे इसै पुन्ना तामिनसी

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उनका सामना किस तरीके से करना है ये अक्सर हमारे हाथ में ही होता है। कभी रास्ता आसान होता है तो कभी थोड़ा सा मुश्किल, कभी लोग साथ चलते हैं, कभी कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। लेकिन अकेले चलना हमेशा अकेला नहीं होता, कभी हमारी उम्मीद हमारे साथ होती है, कभी कोई याद और कभी कोई प्यारा सा गीत, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, कई बार एक छोटी सी उम्मीद, एक अच्छा गीत और एक सच्ची मुस्कान और किसी अपने की आवाज हमारे पूरे दिन का अर्थ बदल देती है। तो जहां भी हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों को थोड़ा सा समय दीजिए, आपकी रात सुकून भरी हो, इसी उम्मीद के साथ मैं छोड़ जाता हूं आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear, that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
2: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. The presidents of Russia and Brazil are set to arrive in the national capital later tonight to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive tomorrow morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to land in New Delhi tomorrow. The BRICS Summit 2026 will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirmed their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defence, clean energy, advanced technologies and talent mobility. Union Home Minister Amit Shah today met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi. They discussed strengthening cooperation in social development, irrigation, cooperatives, natural farming, including millets and solar energy. In a social media post, Mr. Shah said India cherishes its bond with the Aga Khan Development Network, tied by a shared commitment to human development. The minister also reaffirmed shared commitment to advancing these partnerships for sustainable development and the greater good of humanity. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. And that's the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज मार्जिनली, सेंसेक्स एड्स ओवर 100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,450। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सेज फिनटेक कंपनी शुड ट्रीट कस्टमर डेटा एज अ फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी रादर दैन एज अ बिजनेस एसेट। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज अराउंड 4%, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स अबव $100 अ बैरल।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी, निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया। इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से उभर कर बढ़त की स्थिति में देखे गए।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड 0.2% हायर टुडे, स्नैपिंग अ 3-डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स गेन 138 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,903। निफ्टी एडेड 46 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,478। However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2.3%, एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 2.4%, टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंट में 1.1% की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,502 companies declined, 1,826 companies advanced and 199 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई। क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उस पर डालेंगी?
2: तो निखिल, हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि महरम का अगर काम करे आज का बाजार की थोड़ी जो मामूली बढ़त थी, पर ऐसा नहीं है। बाजार आज काफी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे का दौर रहा बाजार में और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाजार ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी, यानी ज्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में, वो वीक है, कमजोर है, अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं। पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, दोबारा से उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है। और उसका मुख्य कारण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, खासतौर से मैं कहूँगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो काफी बढ़ रही हैं, और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे, और उसकी वजह से जो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो भी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स इस वक्त बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो अंडरलाइन ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में वीक ही रहेगा।
1: लेकिन इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट है उसके लिए आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़त थी और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लार्ज कैप्स को। इनफैक्ट हेडलाइन नंबर्स जब भी हम देखते थे, जो निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स देखते थे, तो वहां पर हम देखते थे कि गिरावट होती थी, लेकिन तब भी मिड कैप स्मॉल

0: कैप स्टॉक्स में बाइंग होती थी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें, आप आगे आंकड़े देखेंगे तो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुझान उनका है। तो पर मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके अंदर, क्योंकि काफी शेयर्स में हम देख रहे थे काफी गेंस आ रहे थे, तो नेचुरली जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अगर वीकनेस का है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और मिड कैप में आज वही था।
1: वी आर सीइंग दैट DIIs हैव कंटिन्यूड टू सपोर्ट द मार्केट। देयर इज आल्सो द स्टोरी ऑफ द AMFI data for the month of August, where equity mutual funds have increased investment by 19%. So we see institutional investors play a very important role in supporting the market right now. But the biggest concern is this overall sentiment, basically on inflation, especially imported inflation, what's going on in the Strait of Hormuz. How do you see the market changing? Because Jefferies is saying that, you know, India is just waiting for the opportunity really to break out of this. How will you explain what's happening in the market in the short term?
0: So, Arjun, in fact, there are two, I would say, counter trends underlying in the market. One, of course, is a macro trend, which is the global factors, political factors, economic factors, inflation that you are importing via high crude oil prices, higher interest rates. So that is one trend which is overlying in terms of market trends. The other thing is, of course, the internals of the Indian economy. So we see that while all these pressures were there, the Indian economy has continued to do very well. We've grown at a robust 7.8% rate in the in second quarter GDP numbers. We also have seen that investors, domestic investors, they continue to be positive and bullish about the markets. And you mentioned that DIIs have seen inflows of funds, and that is the reason that we find that the domestic investors, investment institutions, they have been doing, they have been supporting the market because they have fund flows from investors. My guess is that when the macro situation, the international situation, it stabilizes, we will see Indian markets outperform.
1: FIIs returning to the market, is that possible in the short to medium term, especially with the bond yields in the US? Because hedge funds will look at where the returns are maximum, especially in their own currency. They don't have to go through the process of buying rupees to invest in our market and then once again buy dollars really to convert it and then reinvest it back into the markets. Where do you see the FIIs, FPIs returning really?
0: So traditionally, if US interest rates start going up like they're happening right now, if you look at the 10-year bond yield in USA, it is about 4.85%. Usually, if that happens, then FIIs would pull money out of emerging markets and take that money back to America because they would like to invest in American
1: bonds.
0: Arbitrage. The interest rates are there. However, if you look at what has happened in India vis-a-vis the FCNRB deposits, then you will realize that foreigners still have a lot of faith in the Indian economy. We have seen approximately $125-127 billion flow into Indian economy via the FCNRB route. So I think that while FIIs may be tempted to take out money in the short term, in the longer term, they want to put money in India because that is where the growth opportunities are. So my guess is that, again, I circle back to the same point. The moment we find that macro, global macro situation improves or it stabilizes, I think we will see FIIs come back to India, which may be, hopefully, not towards the end of this year.
1: So we're talking about interest rates being offered by FCNR deposits versus what the treasuries in the US offer to investors there on government debt itself. But there is clearly a difference on which paper inspires more confidence for hedge funds.
0: So see, we cannot compare FCNRB flows with 10-year bond yields because FCNRB facility was available only to NRIs. It wasn't available to, let's say, foreign investors or foreign institutions. Whereas any investor in the world can go to US markets, invest in government bonds and get that kind of a yield. So, however, I'm looking at these numbers only as a pointer to the confidence in the Indian economy vis-a-vis the foreign investors. So, clearly, I think while the interest rates we offered on FCNRB deposits were much higher, in the range of about 6.5%, I think the broader message was that foreign investors will put in money into India if they have the opportunities. And for that, they need the global situation to stabilize.
2: Puneet, main aapka dhyan thoda sa IT sectors ki aur IT sector ki aur le jana chahunga ki is ke bare mein aap kya batana chahenge hamare shrotaon ko kis tarah ki approach rakhni chahiye IT sector ke prati aur khas taur pe aise samay mein jab hum dekh rahe hain ki large cap ki sthiti alag hai mid cap aur small cap ki sthiti alag hai to kaise ek relation bana sakte hain tino mein.
0: Nikhil, dekhiye IT sector ke ki jo contribution hai Indian economy mein wo kafi significant raha hai. In terms of exports, in terms of corporate earnings, in terms of जो भारत का जो एक साख है पूरी वर्ल्ड में वो आईटी सेक्टर से बनी है. पिछले दिनों हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा वहां पर हमने कुछ कमी देखी है वहां पर कॉन्फिडेंस में, और हम देख रहे हैं कंपनियों के शेयर्स में भी गिरावट आई है. कुछ हद तक रेवेन्यूज में भी थोड़ा चैलेंज रहा है. तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, थोड़ा सा मॉडरेशन का फेज है आईटी सेक्टर में. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए आईटी सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के आईटी सेक्टर में रखना चाहिए. लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन आईटी.
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 24,697 करोड़ रुपए था. वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और अगस्त में यह बढ़कर 32,297 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का स्थान रहा. हालांकि लार्ज कैप और इक्विटी फंड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी दर्ज हुई. दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में निवेश भी 66.6% से ज्यादा बढ़ा और इसमें लगातार तीसरे महीने निवेश सकारात्मक रहा. हालांकि डेट फंड में तस्वीर इसके उल्टी रही, जहां जुलाई में 1,87,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश आया था, वहीं अगस्त में डेट फंड से 8,127 करोड़ रुपए की निकासी हुई है. कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, SIP और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है. पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देख रहे एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है.
0: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी थी. तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में. कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड से पैसा डाल रहे हैं. देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज जो AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए की AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए. और जो इसमें भी जो खास बात है, आपने जो बात बताई कि 32,000 करोड़ रुपया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी जो हर महीने निवेशक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है वो, तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक खबर लगती है इसमें और आई होप कि दिस कंटिन्यूज. इसमें यही हमारा स्ट्रेंथ रही.
2: इसमें एक चीज ये भी आई है सामने निकल करके कि इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड जो है वो निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, बहुत एक अलग चीज है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में जाता है या इंडेक्स फंड में जाता है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो कि ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरा जिसमें रहता है उसमें ज्यादा रिस्की है, वहां पर कम निवेश होता है. पर जैसा हमने अभी आप और हम बात कर रहे थे पहले कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा पैसा डाला है पिछले दिनों, वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगता है, तो वो एक ट्रेंड देख रहे हैं. पर ये देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा रहता नहीं है. लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप्स और जो फ्लेक्सी कैप्स जो फंड्स हैं वो ज्यादा नेचुरली है.
2: इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, 66.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई.
0: देखिए, गोल्ड की चमक तो बनी हुई है भारतीय निवेशकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है.
1: वेल, गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली एज अराउंड 4,400 US dollars per troy ounce when it had touched 4,000. Yet, there's a great deal of interest in ETF regarding gold, but debt funds, there is an outflow in it, an inflow in ETF gold. Why is that the case? Because there's so much money now also going into treasuries, for instance. We mentioned about that earlier. Why is it that debt funds are seeing an outflow?
0: So debt funds usually see a very volatile flow because depending on the money, because mostly debt funds come from corporates. So whenever they have surplus cash lying in the banks, for short term they put money into debt funds. Of course, in the month of September, we have advanced tax payments made out. So I believe that a lot of liquidity would have gone to advanced tax payments, and therefore the flows in debt funds were lower.
1: In more news, RBI Governor Sanjay Malhotra said that fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. The RBI Governor stressed that fintech companies must act as partners in responsible financial innovation and handle customer data responsibly. He emphasized that technology has made banking faster, cheaper and more secure, and noted that India is now the world's third largest fintech ecosystem. SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey stressed that technological innovation should not compromise investor protection, market integrity and financial stability.
3: Our security markets has grown rapidly and technology has been central to that growth. Digital onboarding, electronic payments, robust clearing and settlement, and the ability to trace transactions to the ultimate investor have made participation wider and more secure. But as markets become larger, faster, and more interconnected, regulatory risk also changes. A vulnerability in one part of the ecosystem can travel much faster. This calls for resilient infrastructure and a regulatory approach that can identify such risks.
1: So when we talk about fintech companies, NBFCs, banking sector, today, for instance, BankX actually went up. Their business is booming really because capital and finance is a very important requirement in people's everyday lives, including the operations of companies. Fiduciary responsibility regarding customer data. How do you see privacy playing a important role here versus using customer data as a means really to approach customers and sell loans?
0: So, Arjun, you know, the problem is, of course, there is this lot of intrusion by in the name of financial inclusion. There's also intrusion by financial people who are sellers of products. However, you will realize that trust is the central pillar of any financial system. Whether we have the old system or we have the new fintech-driven system, it is the customer's trust in the institution where they have put their money, which is central to conducting transactions. So while we have this new technology available, which has made things much faster, much better, far more transparent, no doubt about it, the central requirement that it continues to be trustworthy, people have faith where their money is safe, and there are no instances of fraud or money being lost through these new technology tools, I think. Therefore, this kind of question is very important. So while we advance on fintech front, we need to be careful about regulation. We need to be careful about what is the safety of people's money in the system.
1: Let's move on to the crude oil market now. Global crude oil prices surge around 4% today, with Brent crude remaining above $100 a barrel. Traders brace for deeper supply disruptions after Iran and the US launched their largest attacks on shipping since the conflict began. By the time of the latest report, Brent crude was trading 4% up at $105.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 4.3% higher at $100.18 per barrel. Meanwhile, U.S. President Donald Trump yesterday predicted that the war with Iran would end immediately after the U.S. midterm elections in November, adding that oil prices would fall sharply once elections are over. How optimistic are you about this latest projection by U.S. President Donald Trump regarding the midterm elections? Because right now, Iran may attack a carrier of the U.S. and the U.S. is then attacking Iran's oil refineries. It seems to have taken a very ugly turn now, especially when you're talking about crude oil and its extraction from the earth, refining of it, the actual business of crude itself.
0: So, Arjun, it seems that the entire war in the Middle East has boiled down to control of the oil trade.

0: And Iran, of course, is interested that the oil trade is disrupted, and if the oil prices go up, then it increases pressure on the US to wind down its campaign. America, of course, has been claiming that they would want, they will bring the oil prices down, they'll bring inflation down. They haven't succeeded so far. As you have just read out, Brent crude prices are once again at $105 per barrel level. It is a matter of great concern for India, because India, of course, is the world's second largest importer of crude oil. And a huge amount of external resources are now committed to importing energy for us in terms of crude oil, in terms of LPG, LNG. We import this whole gamut of energy products.
1: So, and sulfur as well for fertilizers.
0: Sulfur for fertilizers. And in fact, and many other products which are linked to crude oil as an input. So I think it's a matter of great concern for us. I hope, it's very difficult to predict what will happen, because this is such a volatile situation. Nobody can predict what will happen tomorrow morning. But I hope that oil prices come down. $105 is very difficult for India. And I think we are seeing the impact of that in terms of inflation.
1: In more news, Chinese President Xi Jinping will visit India this week to attend BRICS Summit in New Delhi. Chinese Foreign Ministry today announced that at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President Xi will attend the 18th BRICS Summit from the 12th to the 13th of this month. The visit is expected to be a high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia, and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. It's a fully loaded story, because you have a border dispute with China. They have been partnering Pakistan in their geopolitics against India. India is buying oil from Russia at a discount, which is advantageous to India, and that's been opposed by the US. And Prime Minister Modi has been pleaded by global leaders that please mediate the Russia-Ukraine war. How do you see the BRICS summit here in India?
0: So BRICS summit in India really comes at an extremely important point, because this, like you said, I mean, this story has so many subtexts, so many things that you can read between the lines, because India has a very difficult relationship with China. While we have a very large trade with them, our economies are interdependent in many ways, and yet we have a difficult situation with them on borders. There's a lack of trust between the countries. We've had very long-standing dispute, border dispute with between the two countries. So it's a very difficult relationship which operates at many layers. Hopefully, our leaders are able to resolve these differences for betterment of communities on both sides of the border. And India, China, Russia, I think there's, and Brazil particularly lately, I think these four countries really comprise a very significant part of global economy, and therefore the BRICS summit, I think, at this point of time being held in India, and all the top leaders attending that summit, I think that is very, very significant, and hopefully something better will come out of this.
2: Aur Asia Europe bazaron par nazar dalte hain. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज चौथाई प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 225.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ. अपनी थोड़ा सा बढ़ करके दायरे में अगर देखें तो बैंक ऑफ जापान की नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होनी है 17 और 18 सितंबर को, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी. क्या होगा अगर रेट बढ़ाए जाते हैं उनकी तरफ से? और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट में महंगाई का दबाव आपको महसूस हो रहा है, या ब्याज दरों का कोई दबाव महसूस हो रहा है जिसका असर मार्केट पे पड़ेगा?
0: बिल्कुल निखिल, अगर आप देखिए बैंक ऑफ जापान की आपने बात करी, तो जापान में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है, बिकॉज से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड हमें मालूम चलता है. वो अब 3% के आसपास, करीब 3% 10-year बॉन्ड यील्ड जापान में हो गई है. ये 0.25 से ऊपर बहुत दशकों तक, कई डिकेड्स तक ये ऊपर नहीं गई. और अब अचानक अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी ये काफी दबाव पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा. कारण यह है कि जापान से काफी बड़ा करेंसी ट्रेड होता है, जापान से करेंसी मिलती है लोगों को, देशों को, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए. और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज डिस्टर्ब्ड होंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज में रुकावट आएगी. जापान, अमेरिका में भी इसका असर पड़ेगा, और भारत पे भी असर पड़ेगा. तो वी शुड रियली वॉच बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स वेरी केयरफुली.
1: एंड इवन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक व्हिच हैज रेज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 2.5%. बैंक ऑफ जापान इज एट 1%, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, एनर्जी constituting 14.3% rise as far as Europe is concerned.
0: Absolutely, Arjun. I think that's the elephant in the room really is the inflation, and inflation which has been caused by high energy prices. So central banks have limited choices. Let's see what they do.
1: In more news, global investment bank Jefferies has said that India's new industrial revolution is being driven by a large domestic market, rising private sector participation and sustained policy support. In a report published yesterday, it pointed to measures such as opening space to private players, tax holidays for data centers, incentive schemes for semiconductors, electronics and solar localization measures and government GPU purchases as key enablers of growth across emerging sectors.
2: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,53,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति जब हम देख रहे हैं कि ETF में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं?
0: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहां से, तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मैं अपने जो नजर है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा आने वाला सप्ताह, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और एनी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड। तो गोल्ड एक नाजुक मोड़ पर अभी खड़ा हुआ है।
2: जी पुनीत, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
2: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. The presidents of Russia and Brazil are set to arrive in the national capital later last night to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive today morning. President of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to land in New Delhi today. The BRICS Summit 2026 will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi Traffic Police yesterday informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. Commuters have been advised to use the alternative route suggested by the Delhi Traffic Police. According to the Delhi Traffic Police, priority will be given to emergency and essential service vehicles. Meanwhile, the DMRC has informed that all metro stations will remain open until further notice with regard to multiple queries received on the closure in view of BRICS Summit. It said operations continue as usual. It advised commuters to check DMRC website, social media platforms or Delhi Metro Sarthi app for further updates. In cricket, India produced a brilliant all-round performance to thrash Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 at the Dubai International Cricket Stadium, securing their place in the final. Chasing a target of 150 runs, Bangladesh made 109 for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बारह बजकर 11 मिनट और 31 सेकंड जी हां हो चुके हैं। शहर की रफ्तार धीरे पड़ने लगी है, लेकिन शायद ऐसे में कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अभी भी जाग रहे हैं, किसी की याद के साथ, किसी के ख्यालों के साथ, या शायद किसी अपनों के इंतजार में। लेकिन इस बीच मैं आपके साथ हूं और आपके लिए लेकर आई हूं निशिगंधा, रात के इन खामोश पलों में आपका साथी, कुछ मीठी यादों के साथ, कुछ अनकही बातों के नाम और कुछ गीत संगीत एहसास के नाम।

हम आज आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं। कुछ ख्याल ऐसे होते हैं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें रोशनी में कह पाना शायद मुश्किल होता है। तो चलिए दिल को थोड़ा सा सुकून देते हैं और सुनवाते हैं आपको ऐसे ही गीत, ऐसे नगमे जिन्हें सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं किस्मत फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में।

किसी की खूबसूरती की तारीफ करना आसान है, लेकिन जब कोई दिल को इतना अच्छा लगने लगे कि शब्द ही कम पड़ जाए, तब बात कुछ और होती है। तो चलिए रात की इस खामोशी में उसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सारा दिन गुजर जाने के बाद जब ये रात का खामोश पहर आता है जहां शोर कम होता है एहसास ज्यादा सुनाई देते हैं, ऐसे में कोई पुराना गीत यादों को फिर से जगा देता है, दिल को एक मीठे सुकून के साथ भर देता है।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात की खामोशी में कुछ यादें और करीब लगने लगती हैं। कोई चेहरा, कोई मुलाकात, उससे जुड़ी कहानी याद आने लगती है।

मोहब्बत जब दिल पर दस्तक देती है तो इंसान थोड़ा दीवाना थोड़ा मस्ताना हो ही जाता है। किसी की मुस्कान, किसी की बातें, किसी की एक झलक दिल की दुनिया बदलने के लिए काफी होती हैं।

कभी कभी प्यार में रूठना भी अच्छा लगता है और मनाना भी। और जब सामने वाला प्यार से कहे कि अच्छा जी अब मान भी जाइए, तो भला ये दिल कितनी देर तक नाराज रह सकता है।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भारत से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात का ये खूबसूरत पहर, साथ में कुछ ऐसे गीत जो दिल को छू जाए और पुरानी यादों को जगा दें। तो दोस्तों एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका, कार्यक्रम है गीत सुहाने। अगले कुछ पलों तक संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में इस याद और खूबसूरत एहसासों के नाम हम और आप साथ रहेंगे, सुनेंगे गीत, मैं सुनवाऊंगी आपको। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं गीत सुहाने का आगाज। हम और आप मिलकर सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत।

मोहब्बत में थोड़ा नटखटपन हो, थोड़ी शरारत हो और आंखों में काजल का जादू, तो बात ही कुछ और होती है। रात के इस खूबसूरत माहौल में याद आ गया ना वो सदाबहार अंदाज जिसमें प्यार भी है और मीठी छेड़छाड़ भी। तो चलिए सुनते हैं एक बेहद प्यारा सा नगमा, फिल्म है किस्मत।

0: गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है कश्मीर की गली, रफी साहब की आवाज में।
1: आयो से

कुछ गीतों में आज भी वो मासूम सी नटखट अदाएं, पुराने जमाने का वो एक जज्बा नजर आता है और आज भी वो गीत कहीं ना कहीं ताजगी भरे महसूस होते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है संघर्ष।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा ले

कभी कभी किसी का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, शिकायत बस इतनी होती है कि उन्होंने बुलाया नहीं और दिल फिर भी उन्हीं की राह देखता रहता है। इसी नटखट शिकायत और प्यार भरे अंदाज के साथ चलिए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिसमें शरारत भी होती है और मोहब्बत भी, बस एक नजर पड़े और दिल की धड़कनें तेज हो जाएं।

किसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो

स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब और निवेश को $50 अरब तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खानोफ के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत आईएनएस मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात सुरमई है, हवाओं में खामोशी, और दिल ऐसे में किसी खास को याद कर रहा है। और ऐसे में जब कोई मीठी सी धुन कानों से निकलकर दिल तक पहुंचती है, तो दिल बस यही पूछता है कि आखिर ये एहसास क्या है, क्या वाकई में यही प्यार है।

रात की खामोशी में जब किसी की यादें आंखों के सामने ठहर जाएं, तो फिर सजने सवरने की क्या जरूरत, मोहब्बत की एक नजर ही काफी है। तो चलिए रात सुरमई में आप और हम सुनते हैं ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए शब्द नहीं बस एक अपना इंसान चाहिए। दिल में छुपी बातें जब होठों तक आ जाएं तो एहसास और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है।

मोहब्बत में सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाता, बल्कि किसी की मुस्कुराहट, उसकी बातें और उसके साथ होने का एहसास भी दिल को अपना बना लेता है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मोहब्बत में इससे खूबसूरत इकरार और क्या होगा, दिल भी आपका, धड़कन भी आपकी, और ये रात भी आपके ही नाम।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये रात ये खामोशी और तुमसे ये दूरी, दिल चाहता है कि तुम बस सामने होते और ये रात थोड़ी और हसीन हो जाती।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजैक ने कहा है कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमहुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच 4th द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कांगो के पूर्वी हिस्से के बुकाबू शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम 26 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं मिलते ही रहेंगे हम।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब अक्सर जिंदगी नहीं बचती। 3:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, इतना तो याद है मुझे। खुद से चलकर आती हैं जब खुशियां, खुद से चलकर आती हैं जब खुशियां, तो अक्सर उनकी कद्र नहीं होती। आ जाती हैं जब बेचैनियां, आ जाती हैं जब बेचैनियां, तो दिन और रात एक सी फिक्र है होती। जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बेचैनियों में पड़कर इतना बेचैन ना होइए, खुशियों को दिल खोलकर अपने दिल में संजोइए। तीन बजकर 26 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:33 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं अंदर से भी अच्छा हो। घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं कि अंदर से भी अच्छा हो। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। सुंदरता का क्या है, सुंदरता तो मेकअप से भी आ जाती है। 3:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

दोस्त सारे खत्म हो गए, दोस्त सारे खत्म हो गए, जब से इस मोबाइल से हमने दोस्ती कर ली। ऑनलाइन ही इतने दोस्त हो गए हैं, ऑनलाइन ही इतने दोस्त हो गए हैं कि ऑफलाइन दोस्ती अब हमने खत्म ही कर ली। पड़ी जब ज़रूरत सच्चे दोस्त की, पड़ी जब ज़रूरत सच्चे दोस्त की, तब कोई न था साथ। रखा मोबाइल, निकले पुराने दोस्तों की तलाश में, तब पता चला अब तो उन सब ने भी इसी मोबाइल से ही दोस्ती कर ली। दोस्त अब सबके ही खत्म हो गए, दोस्त अब सबके ही खत्म हो गए, क्योंकि सभी ने इस मोबाइल से ही दोस्ती कर ली। 3:47 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

3:53 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में कल शनिवार से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग कई अन्य द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर निर्भर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। नई दिल्ली में कल इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में एशियन गेम्स के लिए चुने गए कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी ने 9:22.49 के समय के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अनुरिमा अरुणिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

आज उनसे पहली मुलाकात होगी। किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। छोड़िए बेचैनियां सारी, छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, मेरी इन बातों को भी थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं फर्क तो सब हमारी सोच का ही है इसी बरसात में किसी को हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और किसी को हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कीचड़ 4:29 हो चुके हैं आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ

मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, कोई काम हो गया तो मैंने कर दिया और जो नहीं हुआ तो जैसी भगवान की मर्जी यही है बताता।

अनगिनत प्रयासों के इस दौर में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। हो जाएं जल्दी सफल, इस बात की फिक्र है हर पल होती। होंगे सफल या नहीं, यही कश्मकश दिन रात है रहती। करते हैं आज भी अनगिनत प्रयास, जिसकी कोई गिनती भी नहीं होती। 4:42 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं हर ख्वाब की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब सारे सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब सारे ये भी सिर्फ एक ख्वाब ही है पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता बाकी सभी को अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ती है हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे ये मुमकिन नहीं हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे ये मुमकिन नहीं हर ख्वाब की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ

4:58 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह सीसी,

0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन हिस्सा लेंगे। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में भाग लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रुफसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र में भारत को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरल, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ वर्षा की भावना है। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 18 BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's Share Shift 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. world leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira, Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Lam Dinh Hang are the other heads of the state who will attend the summit. United Nations Secretary and General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia, Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi Traffic Police yesterday informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. Commuters have been advised to use the alternative routes suggested by the Delhi Traffic Police. According to the Delhi Traffic Police, priority will be given to emergency and essential service vehicles. Meanwhile, Delhi Metro has informed that all metro stations will remain open until further notice with regard to multiple queries received on the closure in view of BRICS Summit. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey. Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. The National Testing Agency, NTA, has released provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal till the 13th of this month. NTA announced retest for three papers following complaints about several errors in these papers. In cricket, India thrashed Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 at Dubai International Cricket Stadium, securing their place in the final. India made a strong start at the World Para Shooting Championship, bagging four medals, including one gold, two silver and one bronze on the opening day of the event at Changwon in South Korea. The Indian women's team of Mona Agarwal, Avani Likhara and Mili Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

आज के इस कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल है एक प्यार का नगमा है।

सोच समझ कर लीजिए फैसले सोच समझ कर लीजिए फैसले पर सिर्फ सोच विचार ही ना कीजिए समय के हिसाब से चलते रहिए पर जब समय आएगा तब चलेंगे ये विचार बिल्कुल ना कीजिए देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए सिर्फ सोच विचार में जीवन व्यर्थ ना करिए 5:18 हो चुके हैं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ

अक्सर सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है अक्सर सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है अक्सर बहुत ही परेशान करती हैं ना भूलने की ये आदतें कुछ चीजें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली रखना चाहिए कुछ चीजें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली रखना चाहिए फुल हो जाए मेमोरी तो फोन और कंप्यूटर भी ठीक से काम नहीं करते 5:24 हो चुके हैं सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी